प्रिन सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना तूने यूं तो किया बर्बाद तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है टीचर के लेक्चर याद हो ना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।